0: Discovery. 뉴스 뉴스에서 함께 보시도록 하이.
1: बाटा बच्चों को बताओ लंचनी हिंसा सामाजिक अपराध हो। बाल बालिका लंचनी हिंसा को दुखी महसूस सक्षम हिंसा समिति असंतोष साथी ने परिचित नदी बाक्षा अभिभावक ने अपना छोराछोरी को व्यवहार ख्याल राख बाल बालिका को चाल चलन पानी बेहोरा अस्वाभाविक परिवर्तन आयोग सको पाई उन्हींसंग तत्काल पूरा कराओ बाल बालिका सह नियमित संवाद करने कराओ
2: आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में

0: मधुबन एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज़
1: टाइम चेक सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 9 AM बिहार 4 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब

0: प्रोलो एफएम 101.2 MHz उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: टाइम
2: को साथ में तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलू खुम्बू

0: प्रोलो एफएम 101.2 MHz उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: साउंड चेक सोनी एफएम स्टूडियो टाइम
2: स्नैपिंग एयर बिहान को 11 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोनू दुदकुंड नगर पालिका 5 सोनू खुम्बू
2: आदरणीय श्रोताबृन्द तपाई अहिले सुन्नु भएको छ सुनु एफएम सुनु एफएममा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न नेपाली लोकगीतहरू

0: नागरिक सहायता कक्ष संचालन होने संबंधी सूचना अदली सेवा ग्रही महानुभावर यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रभावी सेवा प्राप्ति को सहजीकरण का नागरिक सहायता कक्ष संचालन कर उक्त कक्ष निःशुल्क सेवा प्राप्त कर सकने सेवा प्राप्ति को नागरिक सहायता कक्ष में संपर्क राख अनुरोध कर सेवा प्राप्ति में कति को प्रलोभन नगरी आपको सेवा लिना हार्दिक अपील करद सेवा प्राप्ति में कई गुनासो आए में गुनासो सुने अधिकार कार्यालय प्रमुख सोजी संपर्क राख सकने
1: कोशी प्रदेश सरकार आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय विराजमान।

साथी भाई को कफाई गफ साथी भाई को कफाई गफ पूरी रात को चाहिए छोटे छोटे अबेर मत छोड़े पची बनु पर्स सवा सीएर।

0: করলে সবাই চ্যালেঞ্জ করলে রাতে কিন করবে সাথী পৌঁছাই শুরু করবে
1: मानव दोष देखा तथा ओसर पसार जघन्य अपराध हो।
2: तपाईको चिन्जानको व्यक्ति वा अरू कसैले रोजगारी दिने नाममा प्रलोभन नपारी लडाई सकाई अवैधानिक रूपमा विदेशमा पुर्याउलान् होस गरौं। कसैले यस्तो लोभ देखाए घर परिवार आफन्त र वडा कार्यालयमा जानकारी दियौ।
1: देश विघन र ओसार पसारबाट बचौं, सिप सिकौं र स्वदेशमै आत्मनिर्भर बनौं। मानव देश विघन तथा ओसार पसारको रोकथाम गरी नागरिक दायित्व पूरा गरौं।
3: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: उज्जवल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: स्टूडियो टाइम
2: इट्स 1 PM दिवस को 1 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बु
2: आदरणीय श्रोतावृन्द तपाई अहिले सुनिरहनु भएको छ सुन्न एफएम सुन्न एफएम मा अब तपाईले सुन्न सक्नुहुन्छ विभिन्न

0: レシピの純正を販売をしてください。
1: な、あすてぃ、わかれきならりゃいこ、フェイビジュリカバブジャリサ。え、かんち、ザザ、パソケルビジュリカバブジャリサ。
2: え、ディディ、チンコ、チンキネラコソリサクノ。Ramro original Vigilica Salmon Harukinu Parinita Japae Tainbata Lambda Esti Duplica Unsada Original Vigilica Salmon Kinata O Salirico Borsa Electronics Mazanapasa
1: Ki Tapai Ghortata Opisculagi Vigilico Ramro Qualitico Salmon Haruk Hostehunsa Edi Qualitico Electronic Salmon Haru Lira Sahan Hunsavani Solo Dutkundanagar Palika Pass Solini Barahako Borsa Electronics and Service Center Ma संपर्क रखने होस।
2: यहाँ विभिन्न ब्रांड का गुणस्तरीय बिजली का संपूर्ण सामान, सर्विस केबल, मल्टीप्लग, पावर सॉकेट, लिस्टी, अर्थिंग कोटार, अर्थिंग रॉड, अर्थिंग केमिकल उपलब्ध था।
1: साथ ही एलसीडी, एलईडी टीवी, साउंड सिस्टम, कंप्यूटर, लैपटॉप, हाउस वायरिंग का सामान हरु, चार्ज वाला टॉर्च लाइट तथा इलेक्ट्रॉनिक सामान हरु होलसेल मूल्य में पाइन्छ। चट्टान में परेर जलेका संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सामान हरु पनि मरम्मत गरिन्छ।
3: साथ ही डीप फ्रिज, फ्रिज एसी पाउनका साथै मरम्मत पनि गरिन्छ।
1: प्रोपाइटर अजय पञ्चियार संपर्क नंबर 98-059-90-94 र 98-63-68-64-18
2: वर्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्विस सेंटर सोलु दुतकुंडा नगरपालिका पास सलेरी सोलुकुम्बु
3: राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक देखि 30 मीटर भित्र

छोटी गाँव घूम जानो मुन्ना पाग भालु बैराती चितुआ पसे पछी तन जन को छेती हुन्छ चुपचाप बसे

0: टुलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हाम्रो अभियान
1: साउन्ड चेक सोनी एफएम स्टुडियो टाइम
2: 3 PM दिउँसोको 3 बजे
0: टाइम चेक को साथमा न्यू स्टार डिजिटल कलर ल्याब तथा ज्वालामय अफसेट प्रेस सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका 5 सोलु खुम्बु

0: सोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Sound check. Sound FM. Studio time.
2: It's 4 p.m. अपराह्नको को 4 बजे.
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतकुंड नगर पालिका 5 सोलु खुम्बू

0: पोलो एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: सन्चे सोलो एफएम स्टुडियो टाइम
2: टाइम
0: चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलो दुतकुंडा नगर पालिका 5 सोलो खुम्बू

मार्गदर्शन केतंग संशिष्यो बांगला आदरणीय श्रोता रो मागदे रंगी दचु केतंग री स्वागत मुला प्रिय रो मागदे रंगी चवन मुला रेडियो नमेश्योसी नन्न केतंग सानबला लागे रंगी द लानन धन्यवाद दोंगे मानबा मुला रंगी जे चुभंदा अगाडी नन्न केतंग सानबला दिवंगदा आसमुला यारबला केतंग री यांगजे क्रूस री परमेश्वरला सहनशीलता विषयरी वचन सन्बल मुला तीनो न्याथे विषय री वचन संशल मुला रंगी जे केतन संशी उबला पत्र पत्रिका सल्लाह सुझाव लागी लानन धन्यवाद मुला फेरी हाब दिन रिनु इरंगलेन रंगीला सल्लाह सुझावला आशा लब मुला नाई रंगीला मिन पर्तिबारी यारके लब मुला एक नंबर रे मुला विपिन घिमिरे दोहरी पाँच रमाइलो बस्ती गुल्मी क्याम्जे दोस्रो रिमुला उमेश आर्याल मालिका उच्च मावि सिमलटारी गुल्मी क्याम्जे अनि तेस्रो रिमुला हरि पौडेल मालिका उच्च मावि सिमलटारी गुल्मी क्याम्जे अनि उत्तम गर्दी भरभङ पाँच सुन्दर बस्ती गुल्मी क्याम्जे प्रिय रोमा गदे एरंगले नन्दा पत्र पत्रिका पुहावा थम्लेसीको विवाह नै रंगीदा अनुरोध लबमुला श्रोता तरिङ्याङ परमेश्वरले वचन सम्बपट्टि सेगे तिङ्याङ क्रुस्ता सीमा परमेश्वर जे नछ्याङ सैदिव शक्ति द्वन्दमुला विवाह विषयरी बातचित लाई प्रभु येशु ख्रिस्टे दुःख कष्ट सैदिव माले परमेश्वर आबजे थे सर्वज्ञानी मुबमुला थे जे न्याङला पापला कारण रंगला अनुहार न्याङ क्याम्जे फिक्तोजे तर रंगला चाचादा रंगला सेम विचार बदलाए आदिनी हजुबा गर्न कदे दोहोर्ती लाइनो थे छाङमान थेदा थाहा तबा जे आहिन कि थे गर्न कदे थे जे मानबला विषम रोपी

हामसेला मुबाला तसी विषम थे सर्वशक्तिमान हिन बंगुला जब मिल भीड़ प्रभु येशु द चुंगमदा गेस्ट मनी बगैचारी हाजे थे बेलरी पत्रुस जे तरवार ट्विसी मिला नबिंग थाबिंग जी तर येशु जे सुंगजी एजे ठीक डानबा तांगई नला आपद बिंती लबा अहम्बा छेजेंगा तो बाहर पलटन बंदा बड़ी स्वर्गदूत जिताई दिशी आपिन बारा पलटन किरी 6000 स्वर्गदूत का दे तब मुला यदि परमेश्वर आबला योजना अनुसार पूरा लदोबा पंसम थेजे 72000 बंदा बड़ी स्वर्गदूत का दे पुहाबा हमसे लुमला तर परमेश्वर ले योजना प्रभु येशु ख्रिस्त क्रूसी बलिदान तबदा पिनबा दुख उठाई थी बता अनि बौरी उठी बता हिंदा मुबला जब येशु ख्रिस्त छेकी दुख पिंजी क्रूस री सेजी थे बेलारी परमेश्वर आबला लानन सेम्फ्राजी चोट लागती जी तर थे जे रंगले योजना बदलाया दिनी यदि थे जे रंगले योजना बदलाई तीसी ख्रिस्त येशु दा क्रूस री सिबादा आजन्मला विषम न्यांगजे मुक्ति दाता आयंग से लम्बो बला थेला हरंग बसान से

0: रोगादे रंगसी दन्दे बर्खर यान्सुबन मला मार्ग दर्शन गेदाङ रोगादे तिनिल चु गेदाङ रंगनिदा खरङबा नन्दी तुदे चु गेदाङ यान्सी रंगनिदा तिकै खुल्दुले ताबा मुसाम रंगनिला पत्रला नन्सी आसला सिची बमुला रंगनिला सल्ला पुइखला पुइखा शिवला विवाह रंगनिदा आनन्द जेन बमुला तुदे रंगनिला प्रार्थना लदोब विषय दुगो मुला विषम रंगनिसी पुइखा शिवगु विवाह नन्ना जेन बमुला रंगनिदा नन्ना चु गेदाङला ठेगाना चुरंग बमुला
1: कार्यक्रम मार्गदर्शन जीपीओ नंबर 8975 ईपीसी 2561 काठमांडू नेपाल ईमेल आईडी twrnepal@yahoo.com एसएमएस लागेरे 9847035679 9847035679
0: लसोरोदुगु तिनी चु गेदाङ यासेङनी फेसी निबन मला दोषी खा बच्चुन दुरी रंगनी लंगे रूप तबरी खलाब विवाह बाचो लवन नई चुगम फेसिनेला लसो फ्याफुल्ला

0: खुम्बु बहुमुखी कैंपस में स्नातक तह प्रथम वर्ष को भर्ना संबंधी सूचना।
1: विगत 34 वर्ष देखि योग्य दक्ष अनुभवी शिक्षकहरू द्वारा शिक्षण र व्यवस्थापन हुँदै आएको यस सुनखुम्बु बहुमुखी क्याम्पसमा शैक्षिक सत्र 2083-84 मा स्नातक तह बीए, बीएड र बीबीएस प्रथम वर्षको भर्ना कार्यक्रम